पूरा तोड़ दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू।

अक्टूबर 2 अक्टूबर का प्रोग्राम जारी किया जा रहा है एंड 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने सुने हैं हैप्पी प्रोग्राम खोर्ट फॉर सुभाष वत एन एनर्जी वत एन एंथुसियाज्म फॉर सुभाष टाइटन साइन प्रोग्राम 3 घंटा लगातार आपको सेवा किए हैं

उजाला रेडियो यहीं सुनने वालों, और यहाँ तक आपने सुने हैं कॉफी चाय मिल्क शो, हमने पेश किए हैं आपके वास्ते सत्यम माता दीन के साथ हम ये प्रोग्राम अब समाप्त करने वाले हैं. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Mooi rijden. Let goed op jezelf.

उजाला पेश करे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सोमवार 1 नवंबर इन मेरवार मैं संजय जोधा मौसमी रॉय इंद्रनील रॉय रविंद्र सिंह बेदी एंड म्यूजिकल बखलाइनी इस हाल फॉर्म आविष्कार ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंटेशन जया चंद्रिका सिंह एंड सुधीर ननन सोमवार 1 नवंबर टिकट वक्त पे खरीद लेना और प्रोग्राम शुरू होने वाला है फ्रॉम 2:30 रात 8:30 फकल ऑफ टॉक के साथ हैव एन जबरदस्त कॉन्सर्ट टूर गाइस हियर टिकट्स फ्रॉम €15 वक्त पे खरीद लेना via meervaart.nl Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee.

मैंने लगा है जो है इश्क या है वो इश्क जैसा कुछ या सो इट्स मुद इट सेम या आई द फिल्म फाइटर वाज दैट द स्टेम फ्रॉम शिल्पा राव मेलोडी एंड विशाल शेखर एंड दिस इज एंटे इन द कैटेगरी ओ गॉड वन मोर रिमिक्स maar wel weer een hele fijne remix. Een prachtige cover. Organa kanam he Apa Jay Sakoi. Ja, het is er eentje die we allemaal wel kunnen meezingen.

क्या ये कहे और क्या ये करे, करता है सोचे ना समझे बिना। यद स्टेम फॉन अरमान मलिक एंड अनन्या बिरला एड फिल्म जज्बाती है दिल।

चंगी मैं चंगी सारी रात सोनियो वे कर लो थोड़ा सा प्यार। फिल्म का नाम है जनूनियत एंड इट इज द सेम फनी वन मींस दैट अंकित तिवारी साहब मेड मीट ब्रो इन दिस हिल के फील गुड धमाका गाना। हिल के गाना बजाना ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो vandaag op deze mooie dag, Ami Jeram Kesat. Arisbar, de stem van Kamal Khan. Oh, oh, Jani Jana. Dhoondhe tujhe divana. Film ka naam hai Pyar Kiya, to Darna Kiya.

तू ते सबसे है यारी, मैं तो जिंदगी से हारी, क्यों रबा इस कदर तोरी आवे। अरमान मलिक ऑन द वोकल्स, फिल्म का नाम है बदला। आई होप यू एंजॉय द गाना। जो इस वक्त काम पे है, थाउज सिट ऑफ ऑल, लेकर इन द ऑटो ऑन द राइड इज, मुझे आशा है कि आप गाना को पसंद और एंजॉय करेंगे। मैं हूं अमी जयराम, en laten we lekker genieten. Samen genieten van heerlijke Ghana Bajana. Hier on the one and only Ujala Radio. Hit Ghana Kameha Hit Kesaat. Aurisbar film Jabariya Jori se. Dhoonde Akhiyan.

दिनों से नई ना टकराए ना जाने क्या ढूंढे अखियां क्या गाना बड़ी खूबसूरत सॉन्ग खूबसूरत गाना फिल्म का नाम है जबरिया जोरी दुनिया दीवानी इश्क न जाने दिल तो बस दिल को पहचाने दिस इज द स्टेम फ्रॉम निमत मेरदान अल तमाश फरीदी एंड ऑफ कोर्स द फिल्म जबरिया जोरी

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

0: खुशी से।
1: प्यार के साथ दीवानगी का जिक्र हो तो बात में थोड़ी मुस्कान भी आ जाती है। दिल की अपनी पसंद होती है और उसे समझाने के लिए ही हमेशा बड़ी दलील नहीं चाहिए। अब सुनिए फिल्म कर्ज से दर्द ए दिल दर्द ए जिगर।

आपने सुना मोहम्मद रफी का दर्दे दिल दर्दे जिगर फिल्म कर्ज से। दिल की तकलीफ को नाम देना भी अपने आप में एक नरम सा एहसास है। जो बात भीतर रह जाती है उसके लिए कभी इतने भर शब्द काफी लगते हैं।

बिना जिंदगी से, फिल्म आंधी का गीत। किसी की कमी का ख्याल केवल बड़े मौकों पर नहीं आता। कभी चाय का दूसरा प्याला, कभी खाली कुर्सी, कभी अधूरी बातचीत उसे याद दिला देती है। रोजमर्रा की इन्हीं छोटी जगहों में किसी की मौजूदगी कितनी गहरी हो सकती है। इस ख्याल में एक शांत

दुलार। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, इस नाम में ही कितना स्नेह है। जैसे किसी की तारीफ के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाए। कितना प्यारा अंदाज है दो रोशन नामों के बीच ठहर कर अपनी खुशी जताने का।

आर लिसनिंग टू उजाला रेडियो। साथ देने का वादा सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उसमें आने वाले अनगिनत दिनों की जगह होती है। कोई बड़ा अवसर नहीं, बस सामान्य दिनों में भी किसी का पास होना, इसी अपनापन भरे ख्याल से आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, मैंने पूछा चांद से।

बात करने का ख्याल कितना सुंदर है। जवाब मिले या ना मिले, कल्पना के लिए पूरा आसमान खुल जाता है। अगला गीत है फिल्म याराना से, छूकर मेरे मन को।

को छूने की बात में किसी बड़े इशारे की जरूरत नहीं होती। कभी कोई सहज बात, कोई छोटा सा ध्यान देर तक याद रहता है और अब कल्पना एक नया रंग लेती है। सुनिए फिल्म आराधना से मेरे सपनों की रानी।

सपनों की दुनिया की अपनी आजादी है। वहां किसी चेहरे से मिलने से पहले ही उसके लिए जगह बन सकती है। इस ख्याल में हल्की सी शरारत भी है और इंतजार की मिठास भी। फिल्म आराधना के उस नाम से इतना सा ख्याल साथ रहे।

दिलबर मेरे, फिल्म सत्ते पे सत्ता से किसी अपने को पुकारने का ये सीधा सा अंदाज अच्छा लगता है। अब बात जिंदगी से होती है, सुनिए फिल्म मासूम का गीत, तुझसे नाराज नहीं।

अरे थाम लो अब दिल, मुकेश जी के साथ लता जी से गीत को आप सुने और फिल्म का नाम नमस्ते जी। उजाला रेडियो का प्रोग्राम, अब हिस्सा लेंगे मोहम्मद रफी।

शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा, इसलिए आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म राम और श्याम से आप सुने आज का उजाला रेडियो का प्रोग्राम में।

नाना नानी, दादा दादी, काका काकी, मामा मामी, फुआ फुफा, बहन और ए भाई, तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस। Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in Amsterdam bij Bar São Paulo aan Amstelveenseweg. Verenigde Lijst wint Letse verkiezingen met ruim 1/3 van de stemmen. PP-leider Feijó roept tot vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez over woningbeleid. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis in meerdere grote steden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Priya Saraya and Arijit Singh, इन दोनों की आवाजों में आप इस गीत को सुने and Benny Dayal के साथ अब श्रेया घोषाल को सुनिए युवाड़ू जला रेडियो पर।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोल मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

रेडियो चारियोर, जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।

0: दुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, दुनिया पक्की फोर ट्वेंटी, मार मार के अरे मार मार के चप्पल मेरी कर दी चप्पल मचंती, दुनिया फोर ट्वेंटी, दुनिया पक्की फोर ट्वेंटी।
1: जहाँ भी देखे कोई हसीना वही बजा दे

इनको चाहिए मोटा बकरा मोटर साड़ी सुर में दानी, जहां भी तकड़ा इंजन देखा करती शंटम शंटी, दुनिया 420 दुनिया पक्की 420।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।